गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया, सिर सिर

तेन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दसो अष्ट सिदान ठाकुर करतल तरिया

राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कभी ओ बाच बेनती चौपाई।

कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आज जुगा स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो, दुष्ट जुते उठवत उत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जेस तुहि तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे, पुरख

सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिने हरि होता के ताप तनक मैं हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई।

खड़ग केत में शरण तेहारी आप हाथ दले हुई उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को अख्तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक न जान्यो

अब पे तरस पयो ई, तरस पया मेहराम तो होई। सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवां,

उठै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जमके दूत नाए तेरे छड जाए। पौ जल बिखम असगा गुरसब दी पार पाए। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाए। कल महे हो पुन गुण गोविंद गाए। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साई।

0: हम साध जना पगराली हर हर जपन जप लोच लोचानी हर कृपा कर बनवाली जान नानक संगत साधु हर मिलो हम साध जना पगराली वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी निवाजी सत्संग जियो वडभागे हो जो कि शाम समय खालसा दीवान सोसाइटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर विखे हाजरियां भर के अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु जी कृपा करन इस तरह हाजरियां भरन दा बल बख्शिश करन। समूह संगत दे चरणां विच बेनती है कि धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज तिन्हां दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित बाल राग दरबार जो कि 17 अते 18 अक्टूबर शाम समय गुरद्वारा साहिब विखे सजाए जाणगे वध तों वध हाजरियां भर के सतगुरां दीआं खुशियां प्राप्त करनियां जी। 17 अते 18 अक्टूबर नूं बाल राग दरबार धन गुरु रामदास साहिब महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित सजाए जाणगे। दूसरी बेनती जो सालाना गुरबाणी कंठ मुकाबला है जो कि 24 अक्टूबर नूं है, आप सब संगतां वध तों वध अपने बच्चियां नूं इस मुकाबले लई रजिस्टर करवाओ। गुरद्वारा साहिब दी वैबसाइट उपर जा करके आप जी बच्चियां नूं रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन दी आखिरी मिति 18 अक्टूबर है, ये नोट करना जी। आओ हुण जो बच्चे गुरद्वारा साहिब विखे गुरबाणी कीर्तन की सिखलाई प्राप्त करते हैं उन्हां पासों पावन गुरबाणी कीर्तन सरवण करिए।

समस्त प्राण है सदा सर्वसाध है समस्त सलाम है सदा भला काम है निर्वार स्वरूप है गौर है अनूप है ओंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकामे त्रभर्गं त्रबादे अगंजी अगादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे

0: चरण कमल
1: सद्गुर मिले सदा मुक्त जिन जो
0: मो चुका नमो विकार अंकुर हर
1: पाप सो सच्चे सो चित लाया
0: जग जीवन दाता पाया रमण गुण

0: सुख अमृत प्रभु नाम
1: प्रभु
0: के गर्भ पर प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे प्रभु के सिमरन काल पर हरे प्रभु सिमरत कछ बिगड़ न लागे प्रभु के सिमरन पौ न बेआपे प्रभु का सिमरन साध के संग

0: मुख प्याऊ बैठ को देन सुखदाई पवन पाव कमला
1: प्रसाद भोग सब रसा
0: सगल समग्री संग साथ बसा
1: हस्त पाव कर नेत्र रसना
0: तिसे त्याग अवर संग रचना।

0: संगे ऊपर जतन
1: की महिमा बने कौन पराने
0: नानक साध की शोभा प्रमाए समानी
1: साध के संग गोचर मिले
0: साध के संग सदा पर फूले
1: साध के संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध के संग मनोहर रहन
1: साध के संग संग ना का तुम
0: सावे

0: प्रसाद विख्या पर हरे,
1: मन की वासना मन से टरे,
0: इंद्री जित पंच दोख ते रहत,
1: नानक कोट मदे को ऐसा परस,
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सुपर सन।

0: रस पीवे
1: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: सो पंडित फिर जोन न आवे
0: वेद पुराण स्मृत बूझे मूल
1: सुखम मैं जाने स्थूल
0: जब वर ना को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सदा देस
0: बीज मंत्र

0: व्यवहार बेत ब्रह्म विचार
1: नानक आप मिलावण हार
0: कबहू नृत करे बात
1: कबहू सोए रहे दिन रात
0: कबहू महाक्रोध विकराल
1: कबहू सबकी हो दरवाल
0: कबहू होए बहे बड़ राजा
1: कबहू भिखारी नीच का साजा
0: कबहू आप की रत में आवे
1: कबहू पला पला कहावे
0: ज्यों प्रभ राखे तिब ही रहे
1: गुर प्रसाद नानक सच कहे
0: कबहू होए पंडित करे बख्यान
1: कबहू मोहन तारी लावे ध्यान
0: कबहू तट तीरथ स्नान
1: कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया
1: अनेक जोन पर में पर मिया
0: नाना रूप ज्यों सुहागी दिखावे
1: जो प्रभ पावे तिवे न जावे
0: जो तिस पावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए
0: कबहू साध संगत एहो पावे
1: उस स्थान ते बोर न आवे
0: अंतर होए ज्ञान परगास

0: छूटै।
1: सहज खटे लख को उठतावे,
0: तृप्त न आवे माया पाछे पावे। न तृप्तावे खप खप मरे,
1: बिना संतोख नाही को राजे।
0: सपन मनोरथ विरथे सब काजे,
1: नाम रंग सर्व सुख होए।
0: बड़ भागी किसे प्राप्त होए,
1: अन्न करावन आपे आप।
0: सदा सदा

0: कौतक करे रंग पार।
1: मैं आप मन अपने माहे
0: मान कीमत कह न जाए,
1: सत सत सत प्रभ समामी
0: गुर प्रसाद किने बतियानी,

0: सब जाए।
1: संत के दुख नीचन जाए,
0: संत दुखी का थाउ को नाहे।
1: नानक संत पावे ता होए विगत पाए,
0: संत का निंदक माहत ताई।
1: संत का निंदक टिक न पाए,
0: संत का निंदक माहत यारा।
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा।
0: संत का

0: परमेश्वर गोविंद
1: कृपा निधान दयाल बख्शंद
0: सात तरह की चरनी पाओ
1: नानक के मन न राओ
0: मनसा पूरन सरना जोग
1: जो कर पाया सोई होग
0: हरन परन जाका नेत्र फोर
1: इसका मंत्र न जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सद जाके
1: सर्व तोक सुनिए करता के
0: राज में राज जोग मह जोगी
1: ताक मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी
0: चाहे तह भक्त है सुख पाया
1: नानक तिस पुर का ज्ञान न पाया
0: लाकी इल्ला की मित नाहे
1: सकल देव हारे अवगाहे
0: पिता का जन्म के जाने पूत
1: सकल परोई अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे
1: जन दास नाम ते आवे से
0: तह गुण में जा को परमाए
1: जन मरे फिर आवे जाए
0: ऊंच नीच तिसके स्थान
1: जैसा जनावे तैसा नानक जान
0: नाना रूप नाना जाके रंग
1: नाना पेक करे एक रंग
0: नाना विद की नो विस्तार
1: प्रवे अविनाशी एक अहंकार
0: नाना चरित करे खिन माहे
1: पूर रे हो पूर सब ठाए
0: नाना विद कर बन बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: सब कर तिसके सब तिसके ठाओ
1: जप जप जीवे नानक हर नाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आगास पाताल
1: नाम के तारे सगले आकार
0: नाम के तारे पूरी अंश पवन
1: नाम के सांगे उदरे सुन सवन
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी बानी
1: सत पुरख सत माहे समानी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत साति उत्पात
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब फली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाये
1: विश्वास सत नानक गुरते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत नितपुर जे जे कोए
1: नाम जपता की गत होए
0: आप सत की असब सत
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्टि सुकरने हार
1: अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मित न जाने किया
1: नानक ज्योतिष पावे सो भरतिया।

0: की गत मित कोई न लाखे।
1: प्रभु के
0: सेवक ऊंचे ऊंचे
1: प्रभु अपनी सेवा लाया।
0: नान सो सेवक ने दिस प्रगटाया।
1: में
0: कर लस्कर कोट लाख है।
1: सास न
0: काट आप राख दे कर हाथ।
1: मानस जतन करत बहुपात
0: तिसके कर्तव्य बिरते जात।
1: राख है अबर न कोए
0: सर्व जिया का राखा सोए।
1: सोच करे रे प्राणी
0: जप नानक प्रभ अलक बिडाणी।
1: बार बार प्रभ जपिए
0: ई अमृत मन तन त्रपिए।
1: नाम रतन

0: सेवक परमेश्वर की गत जाने।
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाउ
0: अनेक बार गुर को बल जाओ।
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता।
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: एक है आप नहीं कछ पार।
1: सहस सियाण पलया न जाइए
0: नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए।
1: सफल दर्शन पेखत पुनीत
0: पेटत
1: संग राम गुण रवे
0: ब्रह्म की दरगह गवे।
1: सुन कर वचन कर्ण गहने
0: मन संतोखा तम प्रतियाने।
1: पूरा गुर अखियो जाका मंत्र
0: अमर दृष्ट पेखे संत।
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिस लए मलाए।
1: जेहबा एक उस्तत अनेक
0: सात पुरख पूरन विवेक।
1: काहू बोल न पहुंचत प्राणी
0: अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी।
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: राखी कीमत किने न पाई।
1: अनक भगत बंधन नित करे
0: चरण कमल हृदय सिमरे।
1: सद बलिहारी सत गुरे अपने
0: नानक जिस प्रसाद है सा प्रभ जपने।
1: एहू हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सो होए।
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन प्रटे बंतास।
1: आठ पहर हर का नाम लेहे
0: सच उपदेश सेवक को दे।
1: ओ माया के संग न लेप
0: मन में राखे हर हर एक।
1: अंधकार दीपक परगासे
0: नानक परम दुख ते नासे।
1: तप्त माहे ठांड वरताई
0: अंध पे अंध नाठे पाई।
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूरे उपदेशे।
1: पहुंचो का निरपो होए बसे
0: सच

0: जापेकी
1: हर आगमा पार
2: तब जात सर्वो कौन्य तार
1: निर्गुण प्रभ सहज सुपाए
2: तब शिव सक्त को कित ठाए
1: आपे आप अपनी ज्योत धरे
2: तब कवन निडर कवन कत डरे
1: मन चल तप करने हार
2: नानक ठाकर अगम अपार तह जन्म हरण को कहा विनाशन
1: करता प्रभ सोए
2: तब जमकी त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एक
2: तब चेतर गुप्त किस

अनेक रमना नादृष्टा है। देहि में इसका विश्राम कैन जाये चल जग समाद। नानक तिसजन सोजी पाए कटकट व्यापर है भगवंत। सर्व लोक पूरन प्रतपाल जैसी आज्ञा तैसा कर्म। चार कुंड तै दिसे समाए।

0: उपदेश
1: पूरे गुरकासन उपदेश
0: बार ब्रह्म नित्य कर पेक
1: सास सा सिमरो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंत
1: आस अनित्या गोता रंग
0: संत जना की तोर मन मंग
1: आप छोट बेनती करो
0: साध संग
1: हरतन के पर लियो पंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साध संग पाए परमानंद
1: नरक निवार उदारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित वह नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दामोदर दीन दयाल।

0: कर प्रसाद दया प्रवतारे
1: नानक निभी केप हमारी
0: प्रभु की उस्तत करो संत भीत
1: सावधान कागर चीत
0: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सोत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊंच पाए अस्थान
1: बोर न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम सात रित नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रव ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास
1: सबके मन सगते उदास
0: सुंदर चतुर तत्व